0: ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
0: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
0: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
0: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
0: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
0: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: कबू का पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई से वाहना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 वो 98 6 56 92 0 26
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थार भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब वे अपने खुके सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेर सुन्ते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह राजीनामा, लावा मुख्यमंत्री के लग दावी पेश करना प्रदेश प्रमुख मियां के आह्वान। टीकापुर में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के समीक्षा एवं कार्यान्वयन करती नागरिक की सुरक्षा करे पर्ना में जोड़ मंच के अध्यक्ष में विस्तार चयन। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में संचालित आंखा शिविर में 215 जन के उपचार, 47 जन ने चश्मा वितरण और टीकापुर के टोल विकास संस्था सरसफाई में सक्रिय। आप पूरा खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह राजीनामा देहलबाट कालिक प्रदेश सभा के बैठक के संबोधन करती मुख्यमंत्री शाह से पद से राजीनामा देहल घोषणा करल बाट। मुख्यमंत्री शाह प्रदेश प्रमुख नजीर मियां समय समीक्षा राजीनामा पत्र बुझाइल के हुई। तत्कालीन सत्ता गठबंधन के दल नेकपा एमाले समर्थन फिरता लेहल पाछे मुख्यमंत्री शाह अल्पमत में परल रहे। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कालसम प्रदेश सभा से विश्वास के मत लेह सके पर्ना रलसिफेन विश्वास के मत के पक्ष में बहुमत नहीं पुग्ना देखल पाछे मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह राजीनामा देहल वहां के सचिवालय से जनायल बा। उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपाल टीकापुर के नगर समिति के लाओ नेतृत्व चयन करगिल बा। बिफेक दिन के बैठल तेसरा अधिवेशन से शेर बहादुर बिस्ता के अध्यक्षता में 7 सदस्य लौ कार्य समिति चयन करल बा। अधिवेशन से उपाध्यक्ष में गीता चौधरी, सचिव में ईश्वर बहादुर साउत, कोषाध्यक्ष में गौरी जयसिंह चयन करगिल बा। उसका सदस्य में रतनलाल चौधरी, नरदीप ओर, शांति काफले चयन हुई बाट। निर्वाचन समिति के संयोजक भीमराम चपाई जानकारी दिल बाट। कार्यक्रम में टीकापुर नगर पालिका में संचालित उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम के समीक्षा करती दिगो पिना के विषय में छलफल करगिल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: इतनी छिटो आमा बन लागो तो सक न सक सब काम कर काम कर विदेश जानु के नगर्ने के जन्म पड़े जस्ते
2: जो राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बम बहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार। टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। हाल देशभर मनसुनी वायु के प्रभाव कायम रहल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार न्यूनचापीय रेखा अब सरदर स्थान के आसपास में अवस्थित रहल बा। इबेला सुदूरपश्चिम लुम्बिनी कर्णाली कोशी बागमती गंडकी प्रदेश में अधिकांश स्थान में पानी पर्ती बा। पाछे 3 घंटा में देश के तमाम स्थान में वर्षा हुई बा। कल से पाछे 3 घंटा में सबसे ढेर वर्षा सुदूरपश्चिम के धलारा जल मापन केन्द्रमा मापन करगिल बा। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 के आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन करगिल बा। वाडा कार्यालयको आयोजना तथा श्रीकृष्ण आँखा अस्पताल टिकापुरको प्राविधिक सहयोगमा आँखा उपचार शिविर सञ्चालन करगिलेको हो। आँखा उपचार शिविरमा 215 जना सेवालेहलबाटै सेवालेहल मध्येकै 47 जना चस्मा वितरण करगिल बा। शिविरमा निशुल्क औषधि वितरण गर्नका साथै 29 जना के शल्यक्रिया केलाक रेफर करगिलबा। शल्यक्रिया करै पर्ना बेरमिया हुक्रन अस्पतालमा निशुल्क सेवा देहल जनाइलबा। वाडा कार्यालयसे नागरिक हुक्रनके आवश्यकता माग अनुसार गत वर्ष समेत आँखा शिविर सञ्चालन गर्दिरहलक वाडा अध्यक्ष दीपक चौधरी जानकारी दिलेबाटै चौधरी नागरिक हुक्रन के आँखी के फिर समेत नियमित चेक जाँच करे पर्ना हो। आँखी के सुरक्षा में ध्यान दे पर्ना नागरिक के समेत जिम्मेवार बनाइनक लाग वाड़ा मनै शिविर आयोजन करल बटवेले बाटे। टिकापुरमा टोल विकास संस्थाको सक्रियतामा सरसफाई काम निरन्तर चलिरहल बा। बर्खा के समयमा नाली सड़क किनारमा पानी जम्ना ठाउँ ठाउँमा फोहोर कुरैना स्थानमा समेत सफा गर्न काममा नागरिक सहभागिता बढ़लबा। नागरिक हुक्र मनसुन जन्य रोग से बचकलाक नियमित रूपमा टोल सरसफाई गर्दै रहलबाटै बुधबार टिकापुर स्थित शुभकामना टोल विकास संस्था ब्लक नम्बर 19 सरसफाई करगिलबा। संस्थाके अध्यक्ष नेत्र बहादुर रावल के नेतृत्वमा टोल सरसफाई करगिलेको। वर्षा के समयमा लामखुट्टे रोग फैलना किरा के प्रजनन कम हुए कहिके डेंगू झाड़ा पखाला जैसिन रोग से बचना के साथ ही विषालु सर्प के टोकाई से फे बचकलक बस्ती सफा करना करती रहल स्थानीय ज्ञानु बहादुर सेट्टी के कहाइबा। स्थानीय सूर्य प्रकाश नेपानी फे फोर से दुर्गंध और प्रदूषण हुईना से बचाई नकलाक साथ ही बाल बालिका हुकरन खेलना नेंगना में फे सहज हुईना के साथ ही तमाम खाल के सर्व रोग से बचकलक सर सफाई में सहभागी हुई बटवाइल बाटे। नेपाली कंग्रेसकै पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा देशमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाइना हो विगतकै विभाजित रलक समेत घाउ हे निको पारकलक आह्वान करलबाटै जेएनजी आन्दोलनकै क्रममा संघात्मक आक्रमणमा पर्के घायल रलक पूर्व सभापति देउवा 5 महिना के विदेश उपचार पाछे विफेक दिनके स्वदेश लौट लगत्तै एक विशेष सन्देश जारी करल बाटै आफ्न सन्देशमा उहाँ आफ्नो कोनो व्यक्ति समेत प्राप्त करतलाक नै हो कि राष्ट्रिय एकता है बलगर बनिन उद्देश्यकै साथ स्वदेश लौटल स्पष्ट पर्लबाटै पूर्व सभापति देउवासे जारी करलक वक्तव्यमा मुलुकमा विद्यमान जटिलता परिस्थितिकै समाधान गर्न सकु राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुके लागे पर्नमा जोड़ दिले बाटै। खोजखबरमा एघरी विश्राम विश्राम पाछ फेरसैबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
6: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
3: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टिकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: तपसिल
3: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी,
6: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी,
3: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
6: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
3: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
6: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
7: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
8: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किङ, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
9: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
10: मै नै जाइ, उहाँ आपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नै निकर्थु।
9: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
10: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
11: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860-71-024 ओ 9840-77-417।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। कैलालीमा सर्ण रोग के तुलना में नई सर्ण रोग के प्रकार उच्च रलक स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली से जनायल बा। स्वास्थ्य कार्यालय के अनुसार जिल्लामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, फोक्सो तथा मुटु सम्बन्धी के रोग के बिरामी आक्रमण के संख्या बढ़ती गेल बा। स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के प्रमुख रमेश कुमार के अनुसार जिल्लामा करीब 1,23,980 जहानमा उच्च रक्तचाप के अनुमान कर गेल बा। मनोमध्य करीब 40,000-45,000 जहान से गेल नियमित समेत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा लेट रहल बाटै। असक जिल्लामा करीब 30,000 जहानमा मधुमेह ओ 48,000 जहानमा फोक्सो सम्बन्धी समेत समस्या रहल तथ्याङमा समेत रलक कुमार जानकारी दिलेबाटै। वहाँके अनुसार कतिपय नागरिक हुक्रन, अपन हुक्रन रोग लग्न के समेत जानकारी नै रहलको जानकारी रहलस तयौं जाने समेत नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा

पालिका वार्ड नम्बर दुईमा संचालित आँखी शिविरमा 215 जनाको उपचार, 47 जना चस्मा वितरण। ओटिगापुरमा टोल विकास संस्थाकै सरसफाईमा सक्रियता। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै अर समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुतु। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्तिर विराम।

0: क्याश फिर्ता लिनु भए त
1: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छेकले कत्रा सुघर बनाएको नि ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

लाइन खुल्ला भावी सुने एकानब्बे पांच एकसठी दुई सय पचपन्न किराकर खुल्ला भावी भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिन्जान करे सेक्न अक्केठो कार्यक्रम गोचाली तब मारे यी कार्यक्रम अपने ग्रहण के लगभग अपन रानी बानी बताए पर्न कार्यक्रम गोचाली मैं अपन सहभागी जनाई सकती अपन मन परल अपन भावना रुचि मेल खैना संग्रह पाएकलक भेटाएकलक लावा गोचाली संग्रह बनने लग जो ये अपने हुकन के लगने हो कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपने हुकन आई सीख थी ये मई का जानकारी करना चाहूँ अपने हुकन के संगे और संग्रह के सितर सितर सितर मौसम बाकनो ठाव में सिम सिम सिम सिम पानी पड़ती हुई अबे के समय में नेंगती घूमती आती फुर्सत के समय में ही भी जहाँ जाऊँ अवस्था में ही भी रेडियो टी का आपूर्ति में एक से एक मेगा हर्ज सुनती हुई अनैती हुई एक छोटी समय निकाल के लिए सफे साथ देख सहे बिल्कुल ना भूलेगी ये मैं जानकारी करना चाहूँ अपने उनके संगे मन कार्यक्रम की शुरुआत करी हम देखो गीत से।

हजुर कार्यक्रममे फेर स्वागत गर्न चाहब अपने हुरन अपने हुरके भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी गले से सुन्टी बाटी समुन्नत समाजके लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम 101 मेगाहर्ज कार्यक्रम गोचाली हवै हरेक हप्ताके शुक्रबारके दिन सवा 10 बजे

करिब करिब करिब एघार बजेसम्म सकुदाने सँगसँगै हुन्थे। आवाज सँगसँगै बाटी सकुजाने लाइन खुल्ला भावी 091-5162-255 गीतगर खुल्ला भावी भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोजाली तपमारे अपन भावना रुचि सुनाएक लगाइसकेको थिए। अपन मन परल रानी बानी हुइल सँगहरूकनके सँगै चिन्जान होइना जो अपनहरूको निक्षा वा रुचि वा मन भएकाले चाहिँ लौरा लौनी चाहिँ कोही सँगहरूको फ्याइसकेको थिए। मैको जानकारी गर्न चाहम अपनहरूकनके सँगै सितर सितर सितर मौसमके सँगसँगै नेङ्की घुम्ट्याटी काम करती आटी फुर्सदके समयमै बाटी अपन अपन काम धन्दामे लागल बाटी कि मजै हिबी कुशल मंगल आरामे हिबी कना हमन लागत एकचोटि समय निकाल कहिले चाहिँ अपने हुक्रे साथ देख चाहे बिल्कुलै ना भुलैबी तिमैका जानकारी गर्न चाहम 091-5162-255 के दगर मार्फत इमेका जानकारी गर्न चाहम अपने हुक्रे सँगै। अब सँगै गुरही पर्व एकदमै लग्गे लग्गे लग्गे आजकल भयो गुरही पर्वको अवसरमा अपने हुक्रे अपन नाटक सङ्घरी हुक्रन शुभकामना फेर देहनास जो मन भएकोले फेर अपने हुक्रे आइसकेको थिए। गुरही पर्वको उपलक्ष्यमा धेर धेर धेर शुभकामना भाव अपने हुक्रन अपने हुक्रनके सोचल रोजल खोजल काम बने अपने हुक्रनके मन मस्तिष्क एकदमै चैनार हुए धेर शुभकामना दिन चाहब अपने हुक्रनके सँगै। सँगैके गुरही पर्व विशेष करके हाम्रा थारुवा दिनके पहिल औ बरुवार त्यौहार हुइले कारण मनैना फेर एकदमै भव्य व सभ्य तरिका से मना देवीकन अपने अर्जी गर्न चाहब अपन अपन पाएक पर्ने ठाउँमै एकदमै भव्य व सभ्य तरिका से मना देखलक अपने एकदमै अर्जी गरब गाउँ घरके तमाम गाउँ हाम्रो गाउँ ठाउँके सङ्घहरू एकदमै सल्लाह गर्ती कसी के मनैना कौन ठाउँमे मनैना कहिके अपने सायद सल्लाह फेरि गर्ती हिँड जस्तै मर्चिकापुर मे फेर गुरही अस्त्रैना कार्यक्रम फे सुन मिलल भावै अवश्य के धनगढ़ी के गुरही चोक में फे एकदमै भव्य रूप में गुरही पर्व मनैना जो मोबाइल में समाचार पोस्ट करल हमरे बात देखी सुनती धेर शुभकामना भयो। अस्ति के काठमाडौँमे फेर एकदमै जोरदार रूपमे गुरही पर्व मनैना जो सल्लाह चल रहल भावै ओकर लग धेर धेर धेर शुभकामना दिन चाहब हाम्रो लाइन खुल्ला भावै 091-5162-255 के अगर खुल्ला भावै अथे पर हाम्रो फेर से एक ठोक गीत जोरी गीत के पाछे फेर से उयो बाटी

0: हजुरहरुकार्यक्रम में फिर से स्वागत करना चाहब अपने हुक्रहन अनलाइन में www.tikapur.fm.org टीकापुर एफएम एप्स मार्फत और हमारे पात्र मार्फत और नेपाली पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सको जाने संगसंगे आती 101 मेगा हर्ज के तरंग मार्फत अपने उपकरण के रेडियो सेट सम्म मोबाइल सेट सम्म हमारे वाती सीपीजी साथ डेटियात मई चांद के पार लाइन खुला बावी साथ देना अपने उपकरण के पाला सुने इक्यानबे पांच इकसठ दुई सौ पचपन के डगर मार्फत अपने आईसिक थी गोरी ही पर्व के उपलक्ष्य में अपने मार्फत संघर्ष उपकरण शुभकामना देहना जो मन बाई लाइन वाले संकेत कौन संघर्ष हजुर राम राम
1: राम राम दादा
0: कहाँ से कर बोल सुन ली
1: बोर्डिया राजापुर सुशांत चौधरी दादा
0: सुशांत चौधरी खबर कैसी बा सुशांत जी
1: खबर ठीक बा कपल दादा जुरा जुरा मौसम बा कपल दादा मौसम मजा बा कपल
0: पानी आई था
1: पानी नहीं था लगभग तरह कपल दादा
0: गुरी पर्व के ढेर से कामना बा अपने है
1: ठीक बा दादा थैंक यू सो मच दादा
0: शुरू करे सकते भावन रुचि
1: भावना कर से अपन से छोट माइंड माया करना अपन से भारी माया आदर सम्मान करना फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना ज्यादा भेदभाव नहीं करना जिला भाई मध्य से दूर न कर पल और ज्यादा मिष्टि न कह पल दादा
0: अपने के भावना और रुचि को संग्रह मन पर थी अपने से संग्रह बनना जो मन लागल संग्रह के सहजे से कैसी के भेटाई सक जाए अपने है छोड़े सकते
1: अंठानबे चौदह इक्यावन इक्यावन पचास अंठानबे चौदह इक्यावन इक्यावन पचास राजापुर नगर पालिका वार्ड नंबर तीन सुशांत चौधरी
0: ठर थे संपर्क नंबर में एकदम सहज से अपने भेटाई सक जाए
1: अभी दादा
0: समझे सकती संघर्ष उपकरण
1: टेक्निकल दादा समझे तू अपना समझे तू कौन पड़ा
0: अब एक लाख विदा है
1: राम राम
0: राम राम सुशांत जी रही बर्दिया राजापुर तीन के संघरे रही ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है यदि वहाँ के भावना और रुचि अपने मन पर थी वहाँ संगे संघरे बनना जो मन लागल संघरे के चाहे राजापुर नगर पालिका तीन सुशांत चौधरी आई ठर ठेकान में अस्ते के नंबर छोड़ जाते हैं नंबर मार्फत एकदम सहज से भेटाई से ठीक है ना अपने उपकरण मई का जानकारी करना चाहे अपने उपकरण के संगे अपने पाला में अपने उपकरण के फोन है बिल्कुल ही सफल हुई की आई से थी लाइन खुला बाई शून्य इक्यानबे पांच इकसठ दुई सौ पचपन के नगर खुला बाई लाइन में भी कल से पूरा बार बटो के जा देवी मजा नेटवर्क को हिल ठाव से साठ देवी मई का जानकारी करना चाहे अपने उपकरण के संगे लाइन खुला बाई अठे पर हमारे फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद से फिर से भैया बाटी

हजुर कार्यक्रममा फेर स्वागत गर्न चाहब अपने उपकरण www.tikapur.fm.org टिकापुर एफएम एप्स मार्फत वा हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसारकै कोही भी कोनो सको जाने सँगसँगै आदि साथ दे सिपीजी एक सय एक मेगा हर्ज के तरङ्ग मार्फत अपने सँगै बाटी बिर्कुलै मै सानीको पार लाइन खुल्ला भयो 091-5162-255 के दगर खुल्ला भयो भावना रुचि सुनैन कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिन्जान करे सेक्न कार्यक्रम गोचाली एकदमै शीतर शीतर जुरार मौसम के सँगसँगै नेङ्टी घुम्ट्याटी फुर्सद के समयमा बाटी काम धन्दामे लागल बाटी कि मजै हुबी कुशल मंगल आरामे हुबिकन हमन लागत हो एकचोटि समय निकारके हिँडे सफे साथ देख चाहिँ ना भुलैबी मजा नेटवर्क हिल ठाउँ साथ देवी पुरा बार बटवा के जा देवी संघर्य बनाके बिचमे चाहिँ संघर्या के साथ चाहिँ बिल्कुलै नाटुबी इमेका जानकारी गर्न चाहम अपने हुकुम के सँगै बर्खा बुन्दी के समय आजकल एकदमै अपन घर आँगन एकदमै सफा गरले रहि पानी जम्न खाल्डा खुल्डी बाकले छैन पूर्वी झारपाट बावै घाँस उम्रल बाकले से उहिने सफा गरबी गर्न चाहम अवस्था के चाहिँ रात के यानि कि बेरी जुन घर से बाहर नेङ एक परगिल कले से लट्ठी और टर्च लाइट के प्रयोग करके अपने हुके नेङ जो बानी बैठे भी मैं जानकारी गर्न चाहम अपने हुकन के सँगै लाइन खुल्ला भयो 091-5162-255 के डगर खुल्ला भावै अथेबार हामीले फेर सेठो गीत जोडी गीत के बाद हामीले फेर सबै बाटी

हजुर, कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाहब। आफ्नो निर्धारित समय फेब्रुअरीको लागि डगर कति लागल अवस्थामा हाम्रो यहाँ पुगलाटी अत्र पटेलसम्म रेडियोनाकै साथ डेली रेडियो प्रेमी मैगर संग्रहण धेरै धन्यवाद सहभागी जन संग्रहण धेरै धन्यवाद कोनो संग्रह सहभागी जनैन प्रयास गरल हेरी अपने कण फिर ढेर धन्यवाद मोरी बोल अपने कण के रेडियो सेट समय पुगा दिले कोर्स संग्रह सीपीजी है फिर ढेर धन्यवाद देना चाहम उसते के गुरही पर्व के उपलक्ष्य में एकदम ढेर ढेर ढेर शुभकामना देती मई कार्यक्रम संचालक चांद के बारे खपत के लग भी रहे तो अपने के दिन शुभ रहे राम राम।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल लिएर इठ कबु झनै फटाका आज इठ का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनल से त लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठो से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लबाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ
3: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगा आश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-892
5: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
5: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
7: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
2: ए सन्तेकी आमा पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
3: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगरिकन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र बन माथि गयो
2: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको बरु अहिलै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याक्ट्री बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
3: आज त सन्तेका बाले मनकै पुरो हर्यो त बाई जाउँ।
4: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 98-68-44-1208 98-486-39-261।

0: कबू कापी रहीठ कबू पेन्सिल रहीठ कबू झलै फटाका आजी काकना हो काकना हो बाबा फिर उस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: ए सन्तेकी आमा पर कान्छाशालाको ब्याको न्युज आएको छ कसो त जाने विचार छ कि नै त
4: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइकन पनि भएन जाउँ भने भयाको मङ्गलसूत्र बन भाँचि गयो
3: यतिकै लागि त सामुएल जोलस बनेको है बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
4: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो बाई जाउँ
5: सामुएल ज्वेलर्स सुनचाँदीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहार सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 98684-1208 98486-39261

0: कापिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के ओस्ता पाटिन गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बाक सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कतरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महिन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 वो 98 6 56 92 0 26
2: टीकापुर नगरपालिका को ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा बारे अत्यंत जरूरी सूचना
3: टीकापुर नगरपालिका को आयोजना में नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ
2: तपसिल
3: वडा नम्बर 4 अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 2 गते
2: वडा नम्बर 5 मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 3 गते
3: वडा नम्बर 2 विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 4 गते
2: वडा नम्बर 3 रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 5 गते
3: वडा नम्बर 1 गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन भदौ 6 गते
2: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते
3: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते
2: वडा नम्बर 9 ढुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते
3: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते
2: र वडा नम्बर 7 छट्टी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते
3: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली का

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाइनाजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं हो का
5: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कबू कापी रहे कबू पेन्सिल रहे कबू झोले फटाका आजी का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हे रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौ।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854889213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
4: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
5: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
4: टिकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी।
9: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
10: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
9: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
10: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
11: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
12: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल सम्र पात्र नेपाली पात्र मफी सुन्दी रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री में खगराज भट्ट नियुक्त मंडल गठन चारजना मंत्री शपथ लेल आपूर्ति बढ़ सके बजार में गैस के अभाव कायम महाकाली नदी में हाम फाल्के दार्चुला की 27 वर्षीय युवा बेपत्ता ओजीएमजी आलू के घाइते शहीद परिवार संग हुई समझौता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन पूरा खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के खगराज भट्ट नियुक्त हुईलबाट नेकपा संसदीय दल के नेता समेत रलक खगराज भट्ट नेकपा एमाले के समर्थन में प्रदेश प्रमुख नजीर मिया समक्ष मुख्यमंत्री के दावी पेश कलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख नजीर मिया संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम नया मुख्यमंत्री नियुक्त केलाक शुक्रवार बिहान के 11 बजेसम दावी पेश करना समय दिल रही दावी पेश हुलपाछा प्रदेश प्रमुख भट्टराई शुक्रवार ने मुख्यमंत्री नियुक्त कलबाट इन्स्याग गत असार 31 गते एमाले बजेट प्रति असहमति जनती कमल बहादुर शाह नेतृत्व के सरकार दिलक समर्थन फिर्ता लेल रही समर्थन गुमरपाछा दबाव में पर्लक शाह बिहार प्रदेश सभा सम्बोधन कर्ती पद्मश्री राजीनामा दिले घोषणा कला रहे सुदूरपश्चिम प्रदेश में सत्ता समयकरण फेरलसंग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के खगराज भट्ट नया मुख्यमंत्री बन्नबाट लम्बा समय समसे कम्युनिस्ट राजनीति में सक्रिय रलक भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री बन्न रहे नेकपा व एमाले के बीच हुलक सत्ता सहकार के समझदारी अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के नेतृत्व नेकपा के भाग में पर्ल रहा मुख्यमंत्री शाह शुक्रवार नई छोट आकार के मंत्री परिषद गठन कलबाट नवनिर्मित सरकार में नेकपा एमाले के तर्फ में से 3 जना मंत्री और 1 जना राज्य मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलबाट एमाले संसदीय दल के उपनेता संतोष शर्मा थापा सामाजिक विकास मंत्री प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल आर्थिक मामिला मंत्री और दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री के रूप में शपथ लेलबाट वस्तांक जानकारी एन बम आर्थिक मामिला हो राज्यमन्त्री की रूप में शपथ लेलबाट असारके तुलनामा साउनमा आपूर्ति बढ़ टीकापुरके बजार ग्यासके अभाव घटल नै हो इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर और टीकापुर नगरपालिकाकी शुक्रवार टीकापुर बजार एक हप्तासे भारी ग्यासके डिलरके अनुगमन कलक अभाव देखिल्बा अनुगमन कलक संघ 7 डिलरके सामान्य अवस्थामा प्रति महिना 14,100 सिलिण्डर वितरण गर्न कलक साउनमा 11,480 सिलिण्डर केलिक वितरण कलबाट माघके तुलनामा आपूर्ति गरिब 19% केलिक कम हुलसफे उपभोक्ता उग्रफे हाहाकार कटिहरूबाट टीकापुर भेरी मनकामना सैपाल ओ रेडिडेन्ट ग्यासकी विक्रेता रहलबा यहाँ रेडिडेन्ट बाहेक सकु कम्पनीके ग्यासके अभाव देखिल्बा टीकापुरके बजारमा सबसे भारी आपूर्तिकर्ता बाँके स्थित भेरी ग्यास रहलबा भेरी ग्यासके टीकापुर माघके तुलनामा आधा केलिक आपूर्ति कर्नाकल्बा टीकापुर नगरपालिकाके ब्लक नम्बर 10 के भेरी ग्यासके उपभोक्ता दलबहादुर बोगटी हप्तासे ग्यास नै पलक बुटिलबाट सत्य शर्मा फे 15 दिनसे अधि ग्यास ओराके काठीमा काम करके चलिती रहल अभिन नैपलक बोटिलोबाट 68 वर्षकी बुद्धि बहादुर चौधरी फे 8 दिनसे ग्यास नैपलक बोटिलोबाट 4,000 जति उपभोक्ता हुलक फेरी ग्यासके डिलर रोजी टेडस सप्लायर मासिक 1,200 सिलिण्डर केलिक पाइल्पा छ उपभोक्ता पुगेना गाह्रो हुटी र संचालक राजु चौधरी बोटिलोबाट भेरीकी विक्रेता बाम बढ़दसके एम बहादुर बम आधा सिलिण्डर बढ़ना दबाव में नई हुलक तर पूरे बढ़ना हाहाकार हुलक महसूस हुलक बोटिलोट दैनिक 2 ठो सिलिण्डर खर्च हुना टीकापुर स्थित सिद्धार्थ होटल में 5 ठो किलिक भेरी सिलिण्डर अलग ग्यास व्यवस्थापन कर्ना तनाव फुटीरल व्यवस्थापक छत्र बोगटी बोटिलोट इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के उपसचिव तारा दत्त पनेरू बजार आपूर्ति कम हुलसेफे अभाव के हल्ला ढेर हुलक अनुगमन कलको आपसे डीलर वितरण कलक नई दुरीना रेकर्ड धन्ना लगा के आपूर्ति व्यवस्था सहज बनिना प्रयास कति रहल बोटिलोट अनुगमन टोली इलाका प्रशासन कार्यालय आन्जर पाजर फोटोकपी सेन्टर और होटल के फे अनुगमन करके निर्देशन दिलबाट दाचुलाके लेकम गाउँपालिका छ। सिरुनाके 27 वर्षे युवाके भारतके वनवासा क्षेत्र मरलक फूलमसेर महाकाली लड्यामा कुटगलवा छ। बेपत्ता हुलबाट शुक्रबार फूलमसेर महाकाली लड्यामा कुटुकेपा छ। उहाँ लड्यामा बेपत्ता हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर जनैलवा घटनाके जानकारी पाएपछि भारतीय सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सहयोगमा उहाँ खोजी कार्य हुतिरहल प्रहरी जनैलवा नद्याके बहाव तीव्र रहलक खोजी कार्यमा कठिनाई हुतिरहल बोटिलोबाट प्रहरी घटनाबारे थप अनुसन्धान हुतिरहल जनैलवाट खोज खबर मई घड़ी विश्राम विश्राम पास फेर सेवी सुन त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम। दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ। तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
1: के गरौ त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
0: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा, त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
1: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
2: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर, ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 0191-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
5: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
6: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत, का कैना हो का?
5: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुई कि गुङ्गुवा बुढो हो न, कबू कहुँ घुम जाए त थाहा पाए।
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टिशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो, घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
0: विश्राम पाछ फिर्से स्वागतबा। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका राणा थारू समुदायकी महिला महिना 30 पर्वकी अवसरमा स्थानीय सार्वजनिक विदा दिन निर्णय कलबाट धनगढ़ी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाकी निर्णय अनुसार यही वर्ष राणा थारू समुदायकी महिला महिना 30 पर्व साउन 30 गते पलक उक्त दिन एक दिन स्थानीय सार्वजनिक विदा दिन निर्णय कलबाट उपमहानगरपालिका जारी कलक सूचनामा साउन 30 गते धनगढ़ी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र केशकु सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था तथा संघ संस्थामा स्थानीय सार्वजनिक विदा लागू हुन उल्लेख कलबाट हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल तृतीयकी दिन राणा थारू समुदायकी महिला 30 पर्व मनाइटी ऐलबाट राणा थारू समुदायकी मौलिक संस्कृति, परम्परा व धार्मिक आस्थासँग जोड़लक यही पर्वकी संरक्षण तथा सम्मान कलाक उपमहानगरपालिका सार्वजनिक विदा निर्णय कलक जनलबाट। नेपाल चीन सीमा नामखा गाउँपालिका छ के लाम्चा क्षेत्रमा से भित्र लगेका 5,00,000 से धेर बढ़ी मूल्यकी अवैध चिनी चिनिया मदिरा सुरक्षाकर्मी के संयुक्त टोली बरामद कलबाट व्यापार मेला के क्रममा लाप्चा नागामा से भित्रेलक उक्त मदिरा व्यवसाय अवस्थामा धरलक भेटल पाछा सुरक्षाकर्मी बरामद कलबाट लाम्चा नाकामा से भित्रेलक व्यवसाय अवस्थामा रलक अवैध चिनी चिनिया मदिरा नियन्त्रण के लिए संयुक्त सुरक्षाकर्मी के टोली सफल हुइलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाके प्रहरी नायब अधीक्षक शंकर खड्का बोटेलबाट वहाँके अनुसार बरामद मदिरा 594 कार्टुन रहवा एक कार्टुनमा 12 बोतल हुना हुलक जम्मा 7,128 बोतल चिनिया मदिरा बरामद हुइला ओ शंकरके ओहो क्रममा सुरक्षाकर्मीके टोली 194 कार्टुन चिनिया बियर फे बरामद कलबाट एक ठो कार्टुनमा 24 बोतल हुना हुलक जम्मा 4,656 बोतल बियर बरामद कलक प्रहरी जनैलबा बरामद मदिरा हो बियरके कुल मूल्य 51,93,600 रूपियाँ रलक प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्का बोटिलबाट व्यापार मेलाकी क्रममा चिनिया मदिरा भित्रेलक सूचनाकी आधारमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवीर शाहीके नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीके टोली परिचालन कल रही सल्ली क्षेत्रमा परिचालित टोली व्यवसाय अवस्थामा ढलक मदिरा बरामद कलबाट बरामद मदिरा शुक्रबार बिहानकै जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुलामा लन्लबाट खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वन्तर सामुदायिक रेडियो टीका फोर एफएम
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
10: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
9: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
10: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
9: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
10: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
9: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
10: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाइ लगायतको उपचार
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
10: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 6777 72
11: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
12: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: सरकार गत वर्ष भदौ 23-24 हुलक जेएनजी आन्दोलनकै क्रममा हुलक घाइते तथा शहीद परिवारकै सम्झौता कार्यान्वयनकलाग सहजीकरण समिति गठन कलबाट आज आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयकै सहसचिव हेमराज अर्याल उक्त जानकारी दिलाबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयकै सहसचिवकै संयोजकत्वमा गठित जेएनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति सरकार आन्दोलनकारी पछि बीचुलक सम्झौता हुकुमकी कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्न जनलबाट नेपाल सरकार जेएनजी प्रतिनिधिगणकै बीच 2082 मंगसिर 24 गते हुलक सम्झौता हो मन्त्री परिषदकै 2083 असार 18 गतेकै बैठकमा स्वीकृत हुलक एकीकृत प्याकेजकै कार्यान्वयनकै प्रगति समीक्षा गर्न मुख्य जिम्मेवारी समिति हतोगिल्वा समितिकै प्याकेज कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्रालयकै बीच आपसी समन्वयमा फेर कायम गरेनवा यस समिति आन्दोलनकै घाइते तथा शहीद परिवारकै लाख प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुकै रूपमा काम गर्न वा मन्त्री परिषदमा स्वीकृति प्याकेजमा व्यवस्था भए हुलक बमोजिम प्रभावित परिवारकी शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगारी समेतकै संवेदनशील विषय कार्यान्वयन मलना समिति ध्यौडसेन सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय सहजीकरण गर्न कार्यदेश पहिलोबाट सम्झौता हो प्याकेज कार्यान्वयनकै क्रममा आइसेक्न व्यावहारिक समस्या वा जटिलता सम्बन्धन समितिकी आवश्यक सुधारकै उपाय पहिला के सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्न वा आफ्नो कार्यदेश बमोजिम काम गर्न क्रम समितिकै आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैर सरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञ व्यक्तिको समेत आमन्त्रण गरी छलफल बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नबाट सहसचिव आरएलके संयुक्तमा गठित यस समिति युकनके सदस्यमा गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा से एक एकजना उपसचिव तथा जेएनजी आन्दोलनकै शहीद परिवार वा घाइते परिवारकै तर्फमा से दुई दुईजनाबाट समितिकै सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै उपसचिव वासुदेव खनाल रहलबाट यही समाचार संग खोज खबर वराली दिन से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री में खगराज फटरयुक्त मंत्रिमंडल गठन चार जना मंत्री शपथ ले आपूर्ति बढ़ना सेफे बजार में गैस के भाव कायम महाकाली नदी में कुडू के दारचूला के 27 वर्षीय युवा बेपत्ता उद्यमजी आंदोलन के घाइते सहित परिवार संघ विलक समझौता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन डीटा बुकला खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टराई हैं धन्यवाद डीटा बुकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदा हूं यात्रा पास 6 बजे के खोज खबर सुन सकेंगे सामुदायिक रेडियो टीका प्रेजेंटेशन की रवि राम राम
13: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
14: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठभन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
13: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
14: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
13: अब त म ढुक्क
15: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
14: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरा पारी टिकापुर कैलाली

0: स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टीकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384, 091-560-118 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ।
1: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति टीकापुर नगरपालिका।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बान के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा ले पर्ने बा।
0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर।
2: छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
3: वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर शम्भु दत्त जोशी ईशान मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार आउँदै हुनुहुन्छ।
2: उपचार हुने समस्याहरू: छालामा एलर्जी वा चिलाउने समस्या हुनु,
3: नवजात शिशु र बाल बालिकाको छालाको समस्या,
2: नङ कपालको समस्या,
3: मुहासा वा मुहासाका दागहरू बढ्दै जानु,
2: छालामा कालो सेतो दाग चाया वा रङ परिवर्तन देखिनु,
3: छालामा संक्रमण फोका वा पस हुनु
2: र महिला र पुरुषमा हुने सम्बन्धी समस्याहरू।
3: डाक्टर आउने दिन यही साउन 31 गते अन्तिम आइतबार, समय मध्याह बाह्र बजेदेखि 3 बजेसम्म।
2: स्थान ईशान मेडिकल हल टिकापुर कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98584 23131 र 98486 14126।

0: किलिटे शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली को अत्यंत जरूरी सूचना व्यावसायिक रूप में केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुखड कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091551414 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्राली टीकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
5: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै

0: सीतापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
2: मिस्तरान बर्जनाउकना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना, कबु कहुरा घुम जाए त थाहा पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
0: छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
5: वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर शम्भुदत्त जोशी ईशान मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार आउँदै हुनुहुन्छ।
0: उपचार हुने समस्याहरू: छालामा एलर्जी वा चिलाउने समस्या हुनु,
5: नवजात शिशु र बालबालिकाको छालाको समस्या,
0: नङ कपालको समस्या,
5: मुहासा वा मुहासाका दागहरू बढ्दै जानु,
0: छालामा कालो सेतो दाग चाया वा रङ परिवर्तन देखिनु,
5: छालामा संक्रमण फोका वा पस हुनु
0: र महिला र पुरुषमा हुने सम्बन्धी समस्याहरू।
5: डाक्टर आउने दिन यही साउन 31 गते अन्तिम आइतबार, समय मध्याह बजेदेखि 3 बजेसम्म।
0: स्थान ईशान मेडिकल हल टीकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 9584 23131 र 9846 14126।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: ले लीजिए
1: एंसिल पैक किन लीजिए
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
2: एंसिल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।